हमारी जेहबा एक रुपया हर के गुण अगम अथाह हम क्यों कर जाए हर तुम बड़ अगम अथाह।

बटी हूँ बता अबार तेरा मर्तबा, बटी हूँ बता अबार तेरा मर्तबा। निर्मल निर्मल सूचा, निर्मल निर्मल सूचा, सुचो सूचा सुचो सूचा, सुचो सूचा सुचो सूचा, अंत न अंता सदा दे अंता, कहो नानक ऊंचो ऊंचा, ऊंचो ऊंचा, ऊंचे ते ऊंचो जानी जे प्रभ ते उठान, ऊंचे ते ऊंचो जानी जे प्रभ ते उठान, तेरो थान, तेरा थान सुहावा रूप सुहावा, तेरे भक्त सोहे दरबारे, तेरा थान सुहावा, तेरा थान सुहावा, अर्थ सुहावे ताल सुहावा, विच अमृत जल छाया, तेरा थान सुहावा, हर जपे हर मंदिर साजिया, हर मंदर साजिया संत भगत गुण गावे राम, हर मंदर साजिया निर्वैर पुरख सतगुर प्रभु दाते, निर्वैर पुरख सतगुर प्रभु दाते, हमें अपराधी तुम बचाते, जिस पापी को मिले ना कोई, जिस पापी को मिले ना कोई, शरण आवे दान।

जन नानक को हर बख्श ले हो, जन नानक को हर बख्श ले हो। हमारी जेहबा एक प्रभ हर के गुण अगम अथाह, हम क्यों कर जपे आनिया हर तुम मद अगम अगाह। हर देहो प्रभु मत गुर सतगुर के पग पा, सत संगत हर मेल प्रभ हम पापी संग तरा। जन नानक को हर बख्श ले हो, हर तुके मेल मिला, हर कृपा कर सुन।

अमरदास अंगद पहचाना, अमरदास रामदास कहायो, साधन लखा मूढ़ नहीं पायो, भिन्न भिन्न सब हो कर जाना, एक रूप जिन हो पहचाना, जिन जाना तिन ही सिद्ध पाई, तिन समझे सिद्ध हाथ ना नानक अंगद को बप धरा, धर्म प्रचुर इह जग मोह करा, अमरदास पुन नाम कहायो, जन दीपक ते दीप जगायो, जागू वरदान।

नाम मिले मन तृप्ति है बिन नामे त्रिग जीवा। कोई गुरमुख सज्जन जे मिले मैं दसे प्रभ गुणता और किस

जो पड़ताल है जिसन पड़ताल गुरुमातंत्र किया जाता है उसका भाव है कि ताल नू बदल के गायन करना जिम्मे हूं पहला जो रहाव है वह ध्रुपद ताल च आया है हूं ताल बदल गया इस असी दीपचंदी कहने 14 सुर मात्र का ताल है ताल बदल गया है इस पड़ताल कहे और श्री गुरु महाराज जी ने पड़ताल भी बड़े शब्द उच्चारण किए तो आप जरा इसका भी रस थोड़ा जा लो।

नक्षत्र वीणा का स्वर है दीन, तिरना जो है इस सितार का स्वर है, तिरना तिरना सितार में वजदा है और दीन जड़ा है वचित्र वीणा में वजदा है। ये साजा के दर्शन कराए ने।

रूप पवन गुरु पाणी पिता माता धर्म महत दिवस रात को दाई दया खेले धर्म आपो अपनी सारे जपो जिन्नी नाम सच नानक

आदि गुरुए नमः जुगाद गुरुए सतगुरु बाबे फिटके से फिटे गुरु बाबे फिटके से फिटे गुरु अंगद की ते कुआरे गुरु तीजी पीढ़ी विचारिया क्या हठ के ना विचारे गुरु

हमारी जेवा एक ब्रह्म हर के गुण अगम अथाह। हम क्यों कर जपे आणिया हर तुम बड अगम अथाह।

हमारी जेबा एक प्रभु जेबा एक अनेक गुण तरे नानक चरणी पाहे जेबा एक कमन गुण कही है तेरे गुण बहुते मैं एक न जाने कमन गुण कही है जेबा एक तू समरथ बजा मेरी मत थोड़ी मेरी मत थोड़ी हम अज्ञान अल्प मत थोड़ी तू समरथ बजा बड़ी हो बड़ा।

सब मर्यादा पूरी हो गई। हुण तक महाराज गुरु बने रहे ते हुण आप जी दी वारी सिख बनन दी सी। आप बड़ी निम्रता नाल बोले, हे अकाल पुरख दे खालसा जीओ, तुसा सारी दुनिया नू अमृत दी दात बख्शनी है। सब तो पहला दास नू भी अमृत दी दात बख्श के गोविंद राय तो गोविंद सिंह बना लवो। भाई दया सिंह जी ने कहा, महाराज अमृत लेना है ता इस दा मुल भी देना पवेगा। असा सिर दे के अमृत प्राप्त कीता है, दसो आप इस बदले की दोगे। हजूर ने सिर झुका के कहा, प्यारे भाई दया सिंह जी, जे सिखा ने अमृत बदले सिर दिता है ता सिखा दा गुरु इस बदले सरबंस देवेगा।

सहन शक्ति जिस विच ए वस्तुआं आ गई, जिस विच ए ताकत आ गई, वो दुनिया तो ही विलक्षण है, ओदी महिमा अपरंपार है।

चारे पासे ये खबर फैल गई। चंदू जिसनू समय दी हकूमत दे बादशाह ने गुरु अर्जन देव पातशाह नू तसीहे दे के शहीद करन दा इशारा मिल चुकया सी। ओ चंदू अपने वल्लों उसने कोई कसर बाकी नहीं छड़ी। प्रभु परमात्मा दा हौ भुल गया, अपना आप भुल गया, सिर्फ एक तशद्दद करना ही उसके सामने। कई तो यह भी कहते ने कि उसने बदला लिया कि गुरु अर्जन देव पातशाह जी के साहबजादे गुरु हरगोबिंद साहब जी जदों चंदू दे भेजे हुए दूतां ने रिश्ता कर दिता और आके दसिया कि गुरु नानक दी गद्दी दे वारस गुरु अर्जन देव पातशाह जी दे सहजादे साहिबजादे हरगोबिंद साहिब पातशाह उन्हां नूं रिश्ता दे आए हां, तां हंकार विच हौमे विच मतिया होया ए चंदू, क्योंकि सरकारे दरबारे ए नौकरी करदा सी, इनू बड़ा चंगा दीवान दा रुतबा हासिल सी। हंकार विच बोलिया, तुसी चुवारे दी इट मोरी नू ला आए हो, पाओ अपने आप नू उसने बहुत वड्डा दसिया ते गुरु घर नू एक बहुत नीवा दर्शाया, जिसनू सुन के कहंदे ने संगतां ने बड़ा रोस कीता और संगत ने आखिया कि गुरु अर्जन देव पातशाह जी हो, आप जी ने यह रिश्ता नहीं लैना, वापस कर दियो, मोड़ दियो रिश्ता। ते संगत दा हुक्म मन के गुरु पंचम पातशाह जी ने यह रिश्ता मोड़ दिता। अज चंदू नू ए वेला हथ आ गया कि समय दी हकूमत ने गुरु अर्जन देव पातशाह जी नू गिरफ्तार करके चंदू दे हवाले कर दिता और चंदू ने अपना बदला लिया। ऐसी एक गाथा आउंदी है, पर असलियत यह है कि हकूमत नहीं सी चाहती सच दी आवाज बुलंद होवे, हकूमत नहीं सी चाहती कि लोग सच दी आवाज नू सुनन ते उस सच दे उत्ते चलन, क्योंकि सच उत्ते जे प्रजा चल पई ते बादशाह नू फिर हकूमत करनी बड़ी औखी हो जाती है। उन्हें तौज़ के जहांगीर विच स्पष्ट लिखिया है कि मैं चाहुंदा हां ए जो झूठ दी दुकान गुरु अर्जन देव चला रहे ने गुरु नानक दे पंजवें वारस, जिस दे उत्ते कुछ हिंदू और कुछ सिरफुरे मुसलमान भी ओदा उपदेश सुनन वास्ते जांदे ने, मैं चाहुंदा हां कि ए दुकान बंद कर दित्ती जावे, जिस तों स्पष्ट नजर आउंदा है कि समय दी हकूमत नहीं सी चाहुंदी कि गुरु अर्जन दे रूप विच सच दी आवाज लोकां दे कन्नां तक पहुंचे, उह सच दी आवाज नूं बंद करना चाहुंदा सी और इस दा इल्जाम भी दूजियां दे सिर ते मढ़ना चाहुंदा सी। चंदू दे हवाले करके आप ओ कश्मीर वल चला गया। चंदू ने ईरखावश होके ए जुलम करने शुरू कीते, चाहुंदा सी कि किवें गुरु अर्जन दे अंदर क्रोध दी अगन भड़क उठे, इहदा सिदक डोल जाए, पर धन गुरु अर्जन देव पातशाह शांति दे पुंज जिन्हां ने अपना पवित्र शरीर ते बलिदान दे दिता पर सिदक नहीं हारिया, शहीदी महल दी नहीं रखण लगिया, हजूर ने सब तो पहला अपना शरीर एदे विच लाया, ओदे उत्ते ते शहीदी महल दी उसारी होई। आप उस अकाल पुरख दे भाणे नूं मनण दा संदेश

ये गौड़ी राग आप जी ने श्रवण किया है। धन गुरु पंचम पातशाह जी की यह सानू देन। सब तो वड्डी गल ए है कि तुसी सारे इत्थे आए हो राग सुन, गुरबाणी का कीर्तन सुन। तो जे इकला राग किते सुनिया जाए तो पर सतगुरु पातशाह कहिंदे ए तां पावन पवित्र है, गुरबाणी राग तां पवित्र हन जे इस बाणी नूं रागां विच गाया जावे। राग ते बाणी जद दोने मिल जांदे हन तो फिर यह भगती है, आप जी की भगती है, तो आप जी की हाजरी है। आप सुन आए हो इस वास्ते धन गुरु अर्जन देव पातशाह जी दे शहीदी दिन विच आप सरबत संगत की हाजरी लग गई है, क्योंकि धन गुरु अर्जन देव पातशाह जी दे राग आप जी नूं सुनने वास्ते प्राप्त होए ने। दासां ने गायन करके अपनी हाजरी लवा रहे हैं। एक राग होर कदारा सतगुरां दा गायन करके उस तों उपरंत रागां दा गुलदस्ता एक तराना आप जी वल्लों हुक्म आया है वह गायन करके फिर समाप्ति करनी है। और बड़े प्यार दे नाल कदारा राग 5-7 मिनट की बंदिश है, सतगुरां दा शब्द है। कदारा महला पंजवां कार चौथा। सतगुरु पातशाह जी ने यह राग कदारा शरण, आओ बड़े प्यार नाल शरण करो।

साहिब श्री गुरु तेग बहादुर पातशाह नूं हिंद दी चादर क्यों आखिया गया। इस लई उन्हां नूं हिंद दी चादर आखिया जांदा है। तेग बहादुर साहिब पातशाह ने उस वक्त अपनी कुर्बानी दिती जिस वक्त के इस हिंदुस्तान नूं बचान वाला कोई भी नहीं सी। उस वक्त गुरु तेग बहादुर साहिब पातशाह ने उन्हां मजलूमां दी बांह फड़ी ते हिंद दी चादर कवाया। अला यार खां जोगी ने बड़ा सुंदर करके लिखिया।

रिद्ध सिद्ध नौनिद भाव प्रभु दा सिमरन कीतियां दीन दुनिया दे सुख मिलदे ने। ता ए दंपती जोड़ा बाबा जी दे चरना चरिया दो चार दिहाड़े नानक सर ठाठ विखे बाबा जी दे चरना विचे सेवा करदे रहे पति पत्नी ते नाल नाल हर वेले पंक्ति पढ़दे सन प्रभ कै सिमरन रिद्ध सिद्ध नौनिद। ते परमेश्वर दी बख्शिश होई क्योंकि महापुरखां दी गवाही सी साड़ी अरदास परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकती क्योंकि साड़ा परमेश्वर नाल कोई संबंध ही नहीं। पर नाम जपण वाले ओ ता हर वेले चेते रखदे हन सतनाम श्री वाहिगुरु। उना दी अरदास अकाल पुरख कदे बिरथी नहीं जान देंदा। ता ए नाम जपण वालियां दी शरण विच आए सन परमेश्वर।

तेरी तन दौलत संपदा कौन सांभेगा। बाबा जी ने आख्या भी पलिया पलाया पुत्र तेनू दे दिए। इना ने आख्या महाराज जिवें आप नू भावे। बाबा जी ने उस जोड़े नू बुलाया ते नान हुक्म कीता कि हर वेले ए पंक्ति पढ़ दे रहे।

नाम बाणी दा तुरा बनना। सेवका ने आख्या जी सत वचन। बाबा जी ने आख्या जिथे एक दो पाठ जा पंज सत पाठ सुखमनी साहब दे रोज कर दे हो ना, हुन लगातार सुखमनी दी

पैसे लै गया, सेवा लै गया, माया लै गया, पर ऐसे महापुरख जिन्हां ने मेनू तारन दा सोचिया, चरना ते गिरिया महाराज बख्श लो, ता इसने भी अमृत छकिया, ते होर इस नूं देख के हजारा संगतां ने अमृत छकिया। ए सन बाबा जी दे तारन दे ढंग, नाम जपावण दे निराले ढंग सन बाबा जी दे। जो कोई भी आउंदा उस नूं नाम जपाउंदे, ताई ता अज नाम जपिया, जिथे बैसन साध जन सोते।

कर किधरे मन ने कह भी देना मैं अज नाम नहीं जपना ते बाबा जी ने खूह दी डार उत्ते जा बैठना खूह दी बनी जा बैठना कि मना जे नाम नहीं जपेगा सोवेगा आलस करेगा ते फिर तू खूह विच गिरेगा ते मर जावेगा ऐसा डर पाके मन नू निरंकार नाल जोड़ना बाबा जी 12:10 ते नितनेम विच आ जांदे सन ते 12:10 ते जदो आपने सिमरन करना ता कलयुग ने नींदर नू भेजना भी जा इना नू नाम ना जपन दे ते बाबा जी ने केसां नू किली नाल बन लेना आखना जदों नींद आवेगी ता केस खिचे जावणगे ते दर्द होवेगा ता मैं फिर उठ के नाम जपण लग जांगा साध संगत बोलो श्री वाहिगुरु क्योंकि नाम जपण वाले हर वेले यही अरदास करदे हन निरंकार ना विसरी ना विसारी आप दयानु आप दे करी इस तरह अनेक ही रूहां नु आप भी जपिया बाबा जी ने ते दुनिया तो भी

बाबा जी ने आख्या असी भी उतना चिर नहीं छकना जितना चिर गुरु नानक आप नहीं भोग लाउणगे। बिलक दियां पईयां सन दो रूहां गुरु नानक दे दर्शन लई, ते तरला पा पा के कहने ने कदों आवोगे कदों आके प्रसाद भोग लावोगे। रोज जाना लकड़ा कटनियां बाजार विच वेचनियां ते आके अरदास करनी। अज छे सत दिहाड़े हो गए जदों भोग नहीं लग्या, अरदास करदे करदे बाबा जी दा शरीर निढाल हो गया, क्योंकि छे सत दिहाड़ियां तो शरीर दे अंदर अन्न दा एक दाना भी नहीं सी गया। देखो किड़ी प्रीत सी बाबा जी दी। सर संगत बोलो श्री वाहे, एडी प्रीत पाई श्री गुरु ग्रंथ साहिब नाल, ते एक भी अन्न दा दाना अंदर ना गया ते शरीर निढाल होके गिर पिया। जदों गिर गए बाबा जी तां बाबा जसवंत सिंह जी नूं क्या आखण लगे, बई रागा सिया हुण तां शब्द पढ़ के जन्म तुम्हारे लेखे, हे निरंकार जे आके भोग लगा लवे तां भला, ते नहीं तां ए जन्म तां असां तेरे लेखे लाउणा ही है। उस वेले सतगुरां दी रहमत होई, प्रीख्या दियां घड़ियां पूरियां होईयां, ते साध संगत श्री गुरु ग्रंथ साहिब विचों परतख गुरु नानक प्रगट होई। साध संगत बोलो श्री वाहिगुरु। परतख प्रगट हो के भोग छकिया, ते फिर प्यार नाल आखदे ने रागा सिया तेनू की चाहिदा जो इतनी बंदगी कर रहे। तां बाबा जसवंत सिंह जी ने आख्या, महाराज तुहाडे दर्शन चाहिए सन, नहीं राजा सिंह कुछ मंग लै। महाराज तुहाडे दर्शन मिल गए होर की चाहिए, नहीं राजा सिंह साडा तीसरा वचन है कुछ मंग। आख्या फिर एक कृपा कर दी, जदों भी मैं कीर्तन करां तां इसे तरह मैनू अपने सोहने दर्शन देंदे रहना। ते बाबा जी नूं साहिब जी ने आख्या, ऐ रिकी जी तुसी की लेना है? बाबा जी आखन लगे, गरीब निवाज मैनू तां मंगना ही कोई नहीं आउंदा, मैं तेरे कोलों की मंगा। साहिब जी ने आख्या, नहीं रिखी जी कुछ तां मंगो, नहीं मेरा दे साईं मैनू मंगना नहीं आउंदा। तां गुरु नानक सच्चे पातशाह आखन लगे, कुछ मंगो बई। तां आख्या, महाराज मंगना तां नहीं आउंदा पर कृपा कर दी, इसे तरह जदों भी प्रसाद तैयार करां ते मेरा गरीब दा प्रवान कर लैण जिथे आप नहीं। भाई लालो दे कोदरे दी रोटी।